रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दे।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: इनको अच्छी लगती है, वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: छत्रपति।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूरज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मजेदार शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो के सफर में मैं हूं आपके साथ ही जैक्स। जी हां, शो का हिस्सा बनने के लिए 8999-04-904 इज द नंबर। याद रखिए, आपने डाउनलोड करना है हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। मैं हूं जॉक्स, उसी है मजेदार शो व्हाट्सएप से। धड़काते रहो

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम, मजेदार शो व्हाट्सएप। मैं हूँ आपका साथी जैक्सिस और शो व्हाट्सएप में आज का कोट ऑफ द डे, आज का कोट कहता है द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज Getting started. What is frequency? Har dil ki dhadkan, sidhe dhadkate raho.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

दोस्तों, रेडियो चुनाव 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं। मजेदार शो व्हाट्सअप बॉलीवुड न्यूज़ एक ऐसा सेगमेंट जो हम आप तक पहुंचाते हैं ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज को, और वही अगर हम बात करें तो इस फ्राइडे टुडे और फ्राइडेज को हम आप तक पहुंचाते हैं आई फील गुड। आई फील गुड एक ऐसा सेगमेंट है जो हम डेडिकेट कर चुके हैं टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक। वेस्टर्न म्यूजिकल शो आप कुछ ही देर में एंजॉय कर पाएंगे हॉट फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चुनार पर। मैं हूँ जॉक ज्यूस, बने रहें, सुनते रहें और दिल की धड़कन को धड़काते रहें।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.
4: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 FM।
5: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
6: व्हाट्सएप पे
5: तभी व्हाट्सएप पे
1: वायरल ऑन शो व्हाट्सएप।

only on Radio Chennai 90.4. I feel good. A new way for the lovers of

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.

बिकेम मैं जावांगा बराबर 2 बजे तक शो चुनार बीट्स के साथ 91.4 रेडियो चुनार प्रयाग हो चुका है शो चुनार बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब बीट्स।

Beats on repeat, show Chunar Beats, आप enjoy कर रहे हैं on Radio Chunar 90.4 FM, दे सारी बातें, मस्ती मजाक, fun, entertainment, entertainment और entertainment के अलावा दे सारी information आप तक पहुंच रही है. Well, हमेशा की तरह आज तो I super excited, थोड़ा सा excited. अब देख लीजिए, थोड़ी थोड़ी सर्दी, कभी गर्मी कभी सर्दी, यानी कि एक तो कश्मीर के वेदर का समझ नहीं आता है. सुबह बारिश होती है, दोपहर में धूप, फिर शाम को बारिश, मतलब हाइड एंड सीक हो रहा है. अब कितना हाइड एंड सीक खेलेंगे मौसम. अरे मौसम फिर औसम लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मौसम कभी भी हसीन सितम करके बिना बादल बारिश भी बरस सकता है. और फिर ये है कि हमने अपना ख्याल थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, पर हम भी है यहाँ पर आपके संग, आप हमारे संग, हम संग संग चले एक सवारी लेकर, यानी कि शो चुनार बीट्स की. और बराबर 2 बजे तक हम बात करेंगे. आज किस पे बात करेंगे बताऊंगी मैं आपको, टॉपिक यानी कि एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और उसके अलावा इंफॉर्मेशन और जज्बात, हालात और ख्याल. बिल्कुल, मैं तो सीखिया इश्क, और मैं सीखिया कि इश्क कितना गहरा होता है जब आप मेरे संग होते हैं और बैक टू बैक सॉन्ग्स होते

सुपर विच तो मेरे बस यही ख्याल आंदा है कि मैया जी आप हैं, मैं हूँ, बैक टू बैक सॉन्ग्स है, प्यार है, आपके विचार है, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर है, रेडियो 99.4 FM, हर दिल की धड़कन।

आपको बता दें कि आज कम्प्लीटली क्लोज्ड है वहीक्यूलर ट्रैफिक मूवमेंट. आज 31st of July है और आज के दिन ये पहले से डिसाइड किया गया था कि आज के दिन कोई भी गाड़ी को ना आने देंगे ना जाने देंगे फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू एंड जम्मू टू कश्मीर. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस. अगर आप भी प्लान करें तो आज के दिन आप नहीं जा सकते हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पे, आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज के दिन भी जो है रोक दी गई है व्हीक्यूलर मूवमेंट. सो आप कल से ट्रैवल कर सकते हैं. कल से वही है कि आप टू वे ट्रैफिक है, आप आ सकते हैं जा सकते हैं आराम से और आपको कोई नहीं रोक सकता. जैसे अभी मैं कह रही हूँ, आपको कोई नहीं रोकता है यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि रोकना मुझे लगता है दूर की बात है. हम तो चाहते हैं कि आप हमसे बात करें और बताएं कि आपकी ओपिनियंस थॉट्स क्या है रिलेटेड टू वेदर, रिलेटेड टू ट्रैफिक, यानी हर एक चीज़ जो आपको चाहिए या जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमें पता चले. तो आप ज़रूर हमारा नाम याद कीजिए. अब नाम तो याद है मेरी पूरी वाइब और ट्राइब को. इट्स हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM और हम आपके संग, आप मेरे संग, हम संग संग चले एक दूसरे के संग. तो अभी संग क्या है कि आप मुझे बताइए कि क्या है आपकी राय और

जी हाँ, हमारा किस्सा अतरंगी है और कश्मीर का अपडेट तो मिल रहा है आपको, कन्याकुमारी का भी मिलेगा, यानी पूरी दुनिया का मिलेगा। अब दुनिया भर में आप हमें सुन सकते हैं, तो दुनिया का अपडेट क्यों ना हम दे।

0: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन,
0: रेडियो चुनार।
2: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
0: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
2: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन,
0: रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम।

शो चुनाव बीच आप सुन रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। आज जुमतुल मुबारक है और आज खास मौके पर हम आपके लिए चलाते हैं आज नातिया कलाम, सूफी कलाम। हम ट्राई करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारे। हम ट्राई करते हैं आप जब दुआओं में हाथ उठाए तो हम सबके लिए दुआ करें। हम इस अजीम वक्त में आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि ये साथ यूं ही बना रहे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए ये टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी, आपके लिए नातिया कलाम, सूफी कलाम। और हम शो के बारे में जो हमारा थीम है, जो टॉपिक है, उस पर भी बात करेंगे। बस बातचीत जारी है, आप सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

शो चुनार बीच आप सुन रहे ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 FM पे सारी बातें हो रही है और आज जुम्मत मुबारक है आप हम आपके लिए डिवोशनल ट्रैक्स चला रहे हैं सूफी म्यूज़िक या फिर नातिया कलाम ट्राई करते हैं आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो पाए खासकर इस अजीम वक्त में और साथ में शो में बात हो रही है स्टूडेंट्स जो चेंज कर रहे हैं हमारी दुनिया को स्टूडेंट्स जो भी चुप नहीं रह रहे हैं स्टूडेंट्स जो बात करते हैं अपने हक के लिए स्टूडेंट्स जिन्हें लगता है अनफेयर होता है तो अपने बात करते हैं हमारे इर्द गिर्द हमारा वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड स्टूडेंट्स भी ये है कि वो अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं एंड हमारा जो गवर्नमेंट है वो समझते हैं हमारे स्टूडेंट्स की डिमांड क्या है दे अंडरस्टैंड कि हमारे स्टूडेंट्स का जो अभी करियर है या फिर उनको क्या नीड है वो उनकी हर बात को रखते हैं समझते हैं और उन्हें जस्टिस ज़रूर मिल जाती है। अब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आपको समझ आ गया होगा वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्ट अभी रिसेंटली हुआ एंड कैसे गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को समझा कैसे रिस्पेक्ट किया उनके डिसीजन को कैसे उनका जो डिमांड था वो पूरा हो पाया कैसे जस्टिस मिल पाया एंड इट्स नेसेसरी कि जब हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स जो अपना कल एक फ्यूचर देखते हैं अपनी कंट्री में उनको उनका हक मिल रहा है वो समझ रहे हैं कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट समझ रही है सो दे आर चेंजिंग देयर फ्यूचर they are changing their world so that ki unko ye kal gird na ho ki hamari maang suni nahi gayi so we are talking about students changing the world aap bhi show ka hissa ban sakte hain 88991904 text whatsapp kijiye show chunar bees ka hissa ban jaiye aaj jo matlab mubarak hai hum aapke liye devotional tracks chala rahe sufi music natia kalam ye sab aapke liye pesh karte hain radio chunar 90.4 fm par

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चुनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक, जुम्मतुल मुबारक। रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब, सुनकर हमद बारी ताला, नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हम्द बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जुम्मतुल मुबारक रेडियो चिनार पर आप और हम हो रहे हैं फैजियाब सुनकर हमद बारी ताला नाते रसूल मकबूल और सूफी कलाम हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 FM।

जी हाँ, हम भी समझ चुके हैं कि ये वक्त है और वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। बस वक्त पे जो चीज़ें सही हो उन सही चीज़ों को हमने समझना है, और जो चीज़ें गलत हो वो हमारे लिए है ही नहीं। तो वक्त इंसान को सब कुछ सिखाता है, और वक्त हमें ये भी बताता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। सिर्फ आप खुद को बदल सकते, अपने जज्बात को बदल सकते हैं, और ख़ुद को समझकर एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। आप हैं, आपको किसी से कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सही है तो हमारा मौला हमारे साथ ही होते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं तो आपके साथ नहीं दे सकती, क्योंकि असरा आएगी शो हंगामा लेकर, और आप बहुत सारी बातें करने वाले हैं असरा के साथ, और मैं जा रही हूँ। और शो हंगामा स्टार्ट होगा, शो चुनार बीट्स ख़त्म हो चुका है, शो म्यूज़िक ऑन डिमांड में आज स्पेशली 2 बजे तक डिवोशनल ट्रैक्स चलते हैं। तो आपके लिए हम ट्राई करते हैं कि डिवोशनल जो ट्रैक्स है वो चलाए, सूफ़ी म्यूज़िक, नादिया कलाम, और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में वक्त गुजारें। अभी के लिए मैं तो चली, बट असरा आएंगी बराबर 2 बजे आपसे बातें करने। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नमस्ते आदाब, शो शुरू हो चुका है। हंगामा जहाँ होता है ड्रामा, बट इन्फॉर्मेशन भी होती है, बैक टू बैक ट्रैक्स होते हैं और जो कुछ भी चल रहा होता है, यानी कि जो बसेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। और जैसे कि आज मुतल मुबारक है, तो आज की जो शुरुआत है वो थोड़ी डिफरेंट है। और देखिए, थोड़ा वो रूहानियत अगर वो महसूस हो, एक पाक दिन होता है, तो आज आते आते कुछ ऐसा प्ले कर रही हूँ जो काफ़ी खूबसूरत है एंड हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग अगर ध्यान से सुना जाए। तो आप भी बताइए कि आपको कैसे ट्रैक सुनना पसंद है, कैसे जो भी सूफ़ी कलाम है या जो भी वो एक रूहानी नियत से रिलेटेड जो भी ट्रैक्स होते हैं, वो किस तरह से सुनना पसंद है आपको। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम। शो शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ होंगी बराबर चार तक। बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। देखिए, हंगामा थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, और अभी की बात करें तो शुरू होने के बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि सोशल मीडिया जो है वहाँ क्या चल रहा है, चाहे इंस्टाग्राम है, एक्स है, फेसबुक है, यूट्यूब है, क्या हो रहा है, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, क्या अभी जो मास ऑफ ऑडियंस है, जो मजॉरिटी ऑफ द सोशल मीडिया है, वो क्या सुनना, क्या किस चीज़ से एंटरटेन हो रहे हैं, किस चीज़ से उनका जो नैरेटिव है वो शेप हो रहा है। और देखिए, AI जग करे, बट AI के बारे में बहुत सारी जो अभी न्यूज़ है वो चल रही है। और अभी अगर बात करें राघव की, राघव गुजाल, उन्होंने ये कहा है अपने एक पॉडकास्ट में कि जो AI है वो एक्चुअली बाहर के जो कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली यूज़फुल चीज़ें बना रहे हैं AI से, बट जो हमारी जनरेशन है भाई वो इतनी सीरियस क्यों नहीं है इस चीज़ को लेके, या जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं, कुछ हिस्सा ऐसा है जो बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहा है AI से, बट कुछ सोशल मीडिया का कुछ सेक्शन ऐसा है जो ऐसी रील्स क्रिएट कर रहा है लाइक हल्कू रे, स्पाइडरमैन रे, बट देखिए ऐसी रील एंटरटेनमेंट के लिए सही लगती हैं, बट वेयर इज़ द इंफॉर्मेशन। और अगर ऐसे ही म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट की बात करें तो अभी AI इज़ बीइंग यूज्ड ताकि वो नॉन कॉपीराइट जो भी म्यूज़िक है वो बनाए, जैसे अगर हम लेटेंट की बात करें, जो लेटेस्ट जो फर्स्ट एपिसोड रहा सीजन 2 का इंडियाज़ गॉट लेटेंट से, वहाँ एक गाना प्ले किया गया था चाय की टपरी, दैट इज़ एन AI जनरेटेड। बट अभी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे OG ओरिजिनल ह्यूमन जनरेटेड सॉन्ग्स हैं जिनको मॉडिफाई करके AI जनरेटेड बनाया जा रहा है। और अभी तो अभी अगर हम पॉप की बात करें, रैप की बात करें, जैज की बात करें, जो सारे जॉनर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ पहुँच चुकी थी, बट अभी जो क्लासिक है, सेमी क्लासिक है, यानी कि जो गज़लें भी हैं वो भी AI जनरेटेड बन रही हैं, बट लोगों का रिस्पॉन्स इज समथिंग डिफरेंट। दे डू नॉट वॉन्ट गुलाम अली, दे डू नॉट वॉन्ट मोहम्मद अली, दे डू नॉट वॉन्ट ऑल ऑफ दीज जो भी दिग्गज लोग हैं वो AI जनरेटेड आवाज में गजल गाएं, बल्कि रिमिक्स तो चलता है बॉस, बट ऑडियंस का कहना है कि हम OG ट्रैक्स ही पसंद करते हैं। अब जब हमने गुलाम अली साहब की बात कर ही ली है, उनकी वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द रनाउंड गजल आवारगी, और जो अभी भी काफी ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पे, नाउ इफ वील टॉक अबाउट आवारगी, दिस ट्रैक, दिस गजल हैज ओवर 10 मिलियन प्लस व्यूज एंड इट हैज बीन यूज्ड इन द रील्स। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, और आप ही बताइए कि आपका म्यूजिक टेस्ट कैसा है। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार में।

0: figure you up aside.
1: Bujh gaya awaregi dil ye pagal.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। शो है हंगामा जहां ड्रामा के साथ अपडेट और इन्फॉर्मेशन भी होती है। और अभी वक्त है अपडेट का, दैट इज रेलवे अपडेट। और आज की अभी जो न्यूज़ आई है, लिटरली 4 घंटे पहले ये ऑर्डर इशू हुआ है बाय द डिविजनल रेलवे मैनेजर। एंड उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई से लेकर अगस्त 14 तक 3 लोकल सर्विस ट्रेन्स कैंसिल हो चुकी हैं। और वो कैंसिल हुई है बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस वर्क, जो ट्रैक्स पे काम चल रहा है, जिसे अगर हम बात करें तो इस वजह से है ताकि एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी और एक स्टेबिलिटी बनी रहे। और जो ट्रेन्स कैंसिल हुई हैं वो सबसे पहले जो 10:50 की जो ट्रेन निकलती थी बानीहाल टू बारामूला, और उसके बाद अगर बात करें दूसरी ट्रेन जो बारामूला से बड़गाम जाती थी अराउंड 5:30 अराउंड, उसके अलावा अगर एक और ट्रेन की बात करें तो वो बड़गाम से बानीहाल जाती थी जो शाम की ट्रेन होती थी अराउंड जो 7 बजे के अराउंड ट्रेन होती थी जो बड़गाम से बानीहाल जाती है। तो यू हैव टू, अगर आप सुन रहे हैं और आप ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना शेड्यूल अकॉर्डिंगली फिक्स करें। आप लेटेस्ट जो टाइम टेबल है ट्रेन का वो अकॉर्डिंग टू समर टाइम टेबल ही है, बट सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेन्स जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। एंड कहाँ से कहाँ तक, जो बारामूला बड़गाम बानीहाल रेलवे लिंक है उस पर मेंटेनेंस चल रहा है, उस वजह से ये 3 ट्रेन्स आर कैंसल्ड अप टू 14th of August। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना शेड्यूल उसी तरह से चेक करें। और बिल्कुल चले तो कट ही जाएगा सफ़र, बट ये है कि यू हैव टू प्लान योर सफ़र अकॉर्डिंगली कि अभी का टाइम टेबल क्या है। चेक द लेटेस्ट ट्रेन, क्या वो ट्रेन जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ जो कैंसिल हो चुकी हैं 3 ट्रेन्स, अगर वो आपके शेड्यूल का हिस्सा थी तो यू हैव टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। ईदर यू हैव टू गो बाय द रोड और यू हैव टू चूज सम अदर ट्रेन टाइमिंग। मैं मोस्टा सुन रही रेडियो सुना 90.4 FM, और हमारा भी सफ़र चल रहा है और चलेगा बराबर जहाँ तक, और तब तक आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हंगामा का ड्रामा बनने के लिए तैयार है तो 8899-904-904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं मोस्टा सुन रही रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

हाय, मेरी फर्स्ट नाइट परसों होगी ना शायद, तो बहुत डर लगा है। हे वैष्णो देवी, अगर सब कुछ अच्छे से हो गया ना तो मैं विजय के साथ आपके दर्शन करने आऊँगी।

0: Daniela. Daniela.
1: दीदी
2: हाँ
1: भैया आपको आई लव यू कह रहे थे
2: उससे आपा

आइयो अन्ना लुंगी डांस एंड दिस इज आवर चांस टू टेल यू कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक इज अ लिटिल फंकी एंड क्रेजी बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द वियर्डेस्ट फूड कॉम्बोज इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फूड कॉम्बोज इंटरनेट पे आ रहे हैं जो लोग बना रहे हैं। अब क्या है वो मैं अभी बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ ट्रैक्स के बाद हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या क्या वियर्ड फूड कॉम्बिनेशन हैं, चाहे हम स्नैक मिक्सिंग की बात करें, किसी भी स्टेट में किस चीज़ को एक बहुत ही आर्टिस्टिक तरीके से कुछ दो अलग डिशेस को जोड़कर एक नई डिश बना दी, या अगर हम स्ट्रीट फूड के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो जलवा चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रीट फूड कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में बात तो करनी पड़ेगी और होगी भी। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दल की धड़कन। और जैसे कि आज शो हंगामा पे हम बात कर रहे हैं वियर्डेस्ट फूड कॉम्बोज इन द वर्ल्ड, एंड स्पेशली हम पहले तो अपने हिंदुस्तान की बात करेंगे कि यहाँ के स्ट्रीट फूड में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। और सिर्फ चेंजेस नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं जो यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसे बिजार फूड कॉम्बिनेशंस को रिकॉर्ड भी करने जाते हैं, फूड व्लॉगिंग करने जाते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कुछ यूट्यूबर्स की जो एक्चुअली उनका कुछ हिस्सा जो कॉन्टेंट का है वो इसी पे बेस्ड है, जो वियर्ड या बिजार चीज़ें होती दुनिया में। और सबसे पहले बात करें थगेश की, ही इज नोन फॉर मेकिंग वीडियोज, ही हैज मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज। अभी तक तो अगर देखा जाए ये फूड वियर्ड कॉम्बिनेशंस के वीडियो सीरीज, ही हैज डन 50 ऑन पर्सन वीडियोज लाइक दैट। और इसके अलावा आदित्य मिनोचा एक और क्रिएटर है जो दिल्ली से है, और वो हर जगह जगह जगह जाकर स्ट्रीट्स पे जाकर ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का जो वो फूड एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है रील्स में, क्या वो सच में

0: अब जो मैं कॉम्बिनेशंस की बात कर रही हूँ, वो ऐसे कुछ स्ट्रीट फूड कॉम्बिनेशन सामने आए, जैसे कि आइसक्रीम के साथ अचार बेचा जा रहा है, वो जो मैंगो का वो कच्चे आम का अचार होता है वेनिला आइसक्रीम के साथ, और जितना सुनने में अजीब लग रहा है उतना खाने में भी अजीब है एज पर द रिव्यूज ऑफ द ऑडियंस। इसके अलावा मैगी, मैगी के साथ क्या क्या नहीं हुआ है, जो अत्याचार मैगी ने सहा है ना, वो किसी और ऐसे फूड आइटम ने नहीं सहा होगा, क्योंकि जैसे ऑरेंज फेंटा मैगी या कभी चॉकलेट मैगी बना देते हैं, और ये सारी चीज़ें एक्चुअली प्रिवेल करती हैं स्ट्रीट फूड में। लोग, कुछ लोग खुशी से खाते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि भाई ये अत्याचार ना ही करो तो बेहतर है।
1: तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
0: अरे सिर्फ पेट का ही नहीं, इमोशनल ही नहीं, पूरे दिलो दिमाग का अत्याचार चालू हो जाता है जब हम स्ट्रीट फूड, ऐसे स्ट्रीट फूड देखते हैं। बल्कि अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो भाई गोलगप्पे, रसगुल्ला, जलेबियाँ, अरे मज़ा आ रहा है, मतलब बात करते हुए ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि बस अभी चाहिए ऐसा कुछ। बट अभी ये भी स्ट्रीट जो स्ट्रीट फूड है, जैसे ओरियो पकोड़ा, ये सब चीज़ें तो हम नहीं खा सकते, बट देर इज़ एन ऑडियंस, देर इज़ मे बी फॉर द वीडियोज दे डू इट, बट क्या है क्या नहीं है, और भी कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हो जो एक्चुअली अच्छे हैं, जिसके बारे में पहले भी मैंने बोला कि कुछ डिशेज ऐसी हैं जिनको कंबाइन करके एक नई डिश बनाई गई है, बट वो एक्चुअली बहुत टेस्टी है, उनके बारे में भी बात होगी। मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

वेलकम बैक जी दौड़ इस फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे। अभी इस हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे शो हंगामा चल रहा है और आज हम एक ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीज़ों के बारे में बात ही कर रहे हैं जो एक्चुअली बहुत टेस्टी भी हो सकती हैं, अच्छी भी नहीं हो सकती, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस और द पर्सन हु इज़ टेस्टिंग दीज काइंड ऑफ डिशेज़। और हमने बहुत सारी स्ट्रीट फूड के बारे में बात

ऐसे फूड कॉम्बिनेशन है जो काफी वियर्ड है बट लोगों को फिर भी पसंद आए। और पहला कॉम्बिनेशन है समोसा जलेबी। बहुत कहते ना, आई एम ड्रूलिंग, काश ये सब चीज़ें यहाँ होती। बट अभी की बात ही कर लेते हैं कि समोसा जलेबी रबड़ी एक ही प्लेट पर एज एक कोल्ड मिक्सचर और जो समोसा बहुत हॉट सर्व किया जाता है, और ये एक नई डिश बन चुकी है, एक स्ट्रीट का नया एक कंपोनेंट बन चुका है स्ट्रीट फूड का इन मध्य प्रदेश, और वहाँ के जो लोग हैं, दिस आर्टिकल इज इन द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल्सो, तो उनका ये है कि ये एक्चुअली आज पर लोगों के टेस्ट के हिसाब से भी उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। तो भाई अगर किसी को अच्छा लग रहा है तो मस्त है। इसके बाद एक और चीज जो एक्चुअली बज फीड इंडिया ने रिकॉर्ड की है, दैट इज सांभर विद मैरी गोल्ड बिस्किट। अब देखिए मैरी गोल्ड के साथ मेरा, जो लोग मुझे जानते हैं तो मैरी गोल्ड के साथ मेरा एक अपना रिश्ता है, बट अभी की बात करें तो सांभर और मैरी गोल्ड साथ में एज अ पापड़ की तरह ट्रीट किया जाता है मैरी गोल्ड को, और लोग सांभर और मैरी गोल्ड साथ में खाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने कहा है कि हमें तो भाई बड़े चटकारे लेकर खाते हैं हम और हमें बहुत मज़ा आता है। इसके अलावा एक और डिश है जो लोगों को काफी मस्त लगती है, दैट इज कर्ड राइस विद पोटैटो चिप्स। आई थिंक ये ऐसी चीज है, थोड़ा वियर्ड या बाजार है, बल्कि ये पोटैटो चिप्स और जो कर्ड राइस, दही और राइस साथ में खाना, मुझे लगता है दिस इज नॉट वियर्ड। बट जो रेडिट इंडिया ने कवर किया है कि ये एक ऐसी चीज है जो लोगों को काफी पसंद आ रही है, बट यूजुअली लोग ये चीज अपने स्टेट्स में खाते नहीं है। देखिए मस्त माहौल तो तब होता जब एकदम क्रेजी क्रेजी डिशेस हमारे सामने होती, मजा आ जाता है। खाने की बात करते ही क्या करें, बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ आशा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM। और आप भी बताइए कि आपको, आपने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी मस्त डिशेस खाई हैं। होता है ना कि कभी हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी डिशेस ट्राई करते हैं, हम आउट ऑफ स्टेशन होता है, आउट ऑफ स्टेट होता है, तो कुछ नया ट्राई करते हैं बट वो अच्छा भी लगता है। तो हमसे शेयर कीजिए किस स्टेट से, कहाँ, किस रीजन में आपने क्या नया ट्राई किया है। मैं मौसरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। ये है हर दिल की धड़कन।

0: देखिए मैं तो आ चुकी हूँ बराबर 2 बजे, बट अभी की बात करें तो अभी इट इज द टाइम फॉर समथिंग स्पेशल, समथिंग क्रेजी दैट हैपेंस 3:30 बजे हर दिन एक्सेप्ट वेंसडे एंड सैटरडे, दैट इज स्पोर्ट्स का अपडेट. एंड स्पोर्ट्स ऑनेस्टली बात करें, स्पोर्ट्स के अपडेट में हम लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपको पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. एंड ऑनेस्टली हम लाइक ऑनेस्टली आई ट्राई टू कवर, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कश्मीर में रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, सो इसलिए आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, ताकि आप बिल्कुल अवेयर रहें.
1: टून इन टू रेडियो चुनान 90.4 FM. गेम ऑन विद आरजे असरा, ओनली ऑन रेडियो चुनान 90.4 FM.
0: देखिए आई नो एंड हे चाहिए स्वीटी का प्यार और हमें चाहिए आपके विचार, विचार भेजिए क्योंकि रेडियो सुनार सही है मेरे यार, तभी बनता है जब आप हमसे बात करते हैं. और देखिए अभी गेम ऑन शुरू हो चुका है, कुछ ही ट्रैक के बाद हम अपडेट के बारे में भी बात करेंगे, क्या है आज की न्यूज. मैं हूँ असरा संतरे, रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं गई और यूं वापस आई.

रेडियो रेडियो चुनान 90.4 एफएम गेम ऑन विद आरजे असरा ओनली ऑन रेडियो चुनान 90.4 एफएम वेलकम बैक टू शो हंगामान सेगमेंट गेम ऑन गेम ऑन चालू है गेम तो चालू है और गेम्स कहाँ और चालू है दैट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अभी की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन एथलीट्स हैं जो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग सिल्वर जीत रहे हैं कुछ लोग ब्रॉन्ज कुछ लोग गोल्ड बट अभी की जो हाईलाइट है कॉमन

वेल्थ गेम्स की, दैट इज नीरज चोपड़ा. नीरज चोपड़ा जो मेंस जेवलिन थ्रो एक स्पोर्ट्स है वो खेलते हैं एंड उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का नाम काफ़ी बार रोशन किया है. अब वो फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं आफ्टर कम्पीटिंग विद 12 फुली कॉम्पिटेंट कम्पिटिटर्स. और अभी की बात करें तो उनका जो मैच है दैट इज़ अगेंस्ट अ पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम अरशद नदीम है. सो ऑब्वियसली ही इज़ एमिंग फॉर गोल्ड. नीरज चोपड़ा द मैन, दे आई वुड से जैसे वो खेलते हैं उनका जो मतलब एक माइंडसेट भी, बिकॉज उनके माइंडसेट की काफ़ी तारीफ होती है, उनके नेचर की काफ़ी तारीफ होती है, उनके खेल की भी काफ़ी तारीफ होती है. और ऑनेस्टली अभी बस ये विशेज़ हैं उनके साथ बिकॉज 1st of August रात के 12:30 बजे रात वो टेलीकास्ट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा कि उनका जो फाइनल मैच है एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 एंड ही इज़ गोइंग टू गेट द गोल्ड.

इनसाइड अस और हमारी विशेस, हमारी प्रेयर्स नीरज चोपड़ा के लिए है एंड वी आर विशिंग हिम द बेस्ट एंड आई होप एंड आई विश ही विल बी द विनर. मैं हूँ आसरा, सुन रही है पड़ी सुनार एंड दिस वॉज आज का एक अपडेट एंड मोर ओवर दिस इज नॉट जस्ट एन अपडेट, दिस इज एन इमोशन बिकॉज वी वॉन्ट नीरज चोपड़ा द विन. मैं हूँ आसरा, सुन रही है पड़ी सुनार. अभी भी कुछ वक्त बाकी है आपकी और मेरी कॉन्वर्जेशन का और हम बात कर सकते हैं, हम आपके एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुँचा सकते हैं. मैं हूँ आसरा, सुन रही है पड़ी सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. एक

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं तो समझ गई फीलिंग्स और टाइम का जो इशारा है वो भी समझ चुकी हूँ कि चार बज चुके हैं, चार बजने वाले हैं एक्चुअली, और आपका और मेरा साथ यहीं तक होता है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि कल वापस आऊँगी बस, क्योंकि यही तो सच है। बस वापस आती हूँ मैं 2 से 4 रेडियो चुनार पर, शो हंगामा ड्रामा।

सो आज के लिए बस इतना ही. बैक टू बैक ट्रैक्स का साथ चलता रहेगा, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर लाइक रेडियो चिनार का यूएसपी ही है. बैक टू बैक ट्रैक्स एड फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा. मैं हूँ अश्रा. आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते हमेशा की तरह आई विल रिमाइंड यू कि कैसे अगर आप अपना ख्याल रखते हैं और अपने आप पर ऊपर वाले पर भरोसा रखते हैं तो हर कोई काम मुमकिन है, और जब आपकी नीयत सही होती है तो हर कोई काम सही ही होता है. मैं हूँ असरा. आज का ज्ञान यहीं तक, और बस दिस वाज ऑल अबाउट मी, दिस वाज ऑल अबाउट शो हंगामा. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: Svedhar Chediva, only on Radio Channel 90.4 FM. 90.4 FM.
1: छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
1: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
2: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
2: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: चुनार बीट्स विद हर्षदीपा, ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar beats with Harshadeva only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harsha Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात

पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज ही असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
3: Oh, मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
4: कुछ और मंगला ना? मोटरसाइकिल ले
5: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन

0: करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत सब्सक्राइब नाउ।
2: फादीनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harjit Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: पुर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खाना के खा

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ ना किसी ने कहा है ना किसी ने सुना है, मुलायजा फरमाइए हुजूर।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
3: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर

सुबह, चैन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, ठेस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

कश्ती कश्ती चाहे भीगे तेरी चुनरिया चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चैनल की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: से जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।